टट्टी कटा छा गई, नजर मिल गई, कल खिल गई, कसम हो गया, जिया खो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया।